0: गर्जन सधैँ बाघ झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज
1: रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला बिहानको 11 बजेको छ।

0: दुल्हन की प्यास जगी,
1: कैसे कहूँ क्या आग लगी,
0: कोयल से तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सूरत है।